それ干すんだい、上がる干すんだい、ドアドラウチュン。ボートチュン Amigo.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा सभी बच्चों को कहते हैं कि आप सभी आप और बाप कंबाइंड है, तो कंबाइंड है तो सिंगल हुए क्या? लोग के जीवन अलग चीज है, लेकिन ब्रह्मांड जीवन में कंबाइंड रूप में ऐसे कंबाइंड हो जो कोई भी अलग कर नहीं सकता। ऐसे कंबाइंड होना, कंबाइंड होना क्या अकेले हो, कंबाइंड हो सदा बाप हर कार्य में सहयोगी है, साथी है। ये नशा रहता है ना, कभी अपने को अकेले तो नहीं समझते, नहीं ना समझते हैं I'm

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा आपका साथी है, जहां भी मुश्किल आवे बस दिल से कहना बाबा मेरा, बाबा मेरा साथी, आ जाओ मदद कर। बाबा भी बंदा हुआ, सिर्फ दिल से कहना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं सोचना, ये तो होना ही है, पहले से पता है ये होना, लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है, समझा? करना है ना, करना है, करना है, कर सकेंगे, एक वर्ष में तैयार हो जाएंगे, क्या आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे, छोड़ना। बाप सब

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी से आपके चेहरे पर फियरत की समापति और सदा स्मृति स्वरूप की झलक चेहरे और चलन में आनी चाहिए। ये माया के जो शब्द है ना, बाप दादा खुश है, भाषण बहुत अच्छे कर रही है, लेकिन जैसे ये भाषणों द्वारा वाणी द्वारा सेवा का उमंग अच्छा रखा और सफलता भी पाई, ऐसे ही अभी समय जैसे भाषणों का अभ्यास करते करते होशियार हो गए होता, ऐसे अभी चेहरे और चलन से किसी को खुशी का वरदान दो, ये अभ्यास करो। क्योंकि समय कम मिलेगा, होना सब अचानक।
3: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Peace.

Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सब मैं की डेट नहीं देखूं, 2000 में होगा, 100, 2001 में होगा, 5 में होगा, ये नहीं सोचो। चलो एवर 80 नहीं भी बनो, लेकिन इसको भी बाप दादा छोड़ देते हैं एवर 80 को, लेकिन सोचो बहुत काल के संस्कार तो चाहिए ना। आप लोग ही सुनाते हो कि बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल के राजाधिकारी बनाता है। अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वो बहुत काल हुआ या अलग काल हुआ, किसमें गिनती होंगे, किसमें होगा, अलग काल में होगा ना। तो क्या बाप से बाप अविनाशी और वर्षा क्या लिया अलग काल? अच्छा लगता है अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत काल कितना काल है वो नहीं सोचो, जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना अंत में भी धोखा नहीं गए। और बहुत काल का अभी का सुख, अभी की श्रेष्ठ स्थिति उससे भी वंचित हो जाए। रोकने से रुका
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: देंगे

ये वाह वाह शब्द भूलना नहीं, वाह वाह। अच्छा जो भी

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज हिम्मत और उमंग उत्साह सदा कायम रहे, इसी की आवश्यकता है। तो सभी को जो भी सामने आए उसको हिम्मत उमंग उत्साह सेकंड की दृष्टि से भी।

विश्व में

0: Vicky Bramar. Jo apneko Brahma Kumar. Kumari samajhte hai. Unko aise hi seva mein busy rehna.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बेफिक्र मत चल,
2: बेफिक्र मत चल,
1: बाप दादा,
2: बाप दादा
1: सदा ही बेफिक्र मत चल।
3: फिक्र का है था पापा बैठे,
1: कारण क्या है, बेफिक्र क्यों है,
2: कल क्या है, ये फिक्र क्यों है।
1: दिल बड़ी है,
4: बेफिक्र क्यों है, क्योंकि दिल बड़ी है।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Buddy। आर्ट्स करो, जिस सने की शक्ति से वो सब परिवर्तित हो जाए, ऐसे
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समय आगे बढ़ रहा है, अति में जा रहा है, तो समय के परिवर्तन करने वाले क्या आप पूर्वजों को अपने दुखी परिवार पर रहम नहीं आता? रहम दिल बनो, दुखियों को सुख का रास्ता बताओ, चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क से। अपना परिवार रहना तो परिवार का दुख मिटाना है, रहम दिल पर।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Eva.

Chador. Fellow. जवाब की प्रकृति सूर्य की शक्ति सूर्य की किरणाएं say

He sucks.

स्वरूप को इमर्ज करो, किरणें फैलाओ, सकाश फैलाओ, जैसे

essai à voir.

Leon.

0: Chop chow. Jesse chow. Chop tak chow. Tap tak. Manako. Ikakar. Karsak.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

살 수가 있을까요?

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा तो आज हर बच्चे को देख यही वरदान दे रही है अगले वर्ष में हर बच्चा धीवर पुरुषार्थ जैसे बाप दादा ने दो बातें पहले ही अटेंशन में दिलाई, क्योंकि संगम समय अचानक समाप्त होना है। एक समय दूसरा संकल्प दोनों की
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Chatty.

さっとした気色で Kissing people

a circle. Sage. Just understand.

this up, me. Why you want that law? Guess.

Fever

Mannes.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जैसे सेवा पर अटेंशन देते हो तो सेवा वृद्धि को तो पाइए ना, बाप दादा खुश है। लेकिन अभी धारणा के ऊपर अटेंशन और चाहिए, क्योंकि अंत में सेवा चाहेंगे तो भी नहीं कर सके। अभी कर ली सो कर ली, उस समय फ्रिश्ता लाइफ या अशरीरी बनने का सेकंड में बिंदु लगाने का यही काम में आना है और अचानक होना है। इसका अभ्यास अगर सेवा भी की, लेकिन इसका अभ्यास कम होगा। सेवा में ही लगे रहे, सेवा में लगना है, लेकिन दोनों का बैलेंस चाहिए। बाप दादा बार बार इशारा दे रहे कि अचानक होना है और ऐसी सरकमटेंस में होना है, इसीलिए बाप को लेना कोई नहीं दे कि आपने बताया नहीं। बार बार बिना बिना इशारे दे रहे, सेवा का फल मिलता है, सेवा की मार्क्स, क्योंकि चार सब्जेक्ट है ना, तो सेवा की सब्जेक्ट की मार्क्स मिलेंगी, लेकिन और तीन सब्जेक्ट अगर एक सब्जेक्ट में आपने मार्क्स ले ली और तीन में कम ली तो नंबर क्या मिलेगा। चार ही में फर्स्ट नंबर आना चाहिए। ये बाप दादा की हर बच्चों के प्रति शुभ आश।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: देखो बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है से लिखना पड़ेगा, लेकिन बिंदु कितना इजी है।

विस्तार में नहीं जाओ।

0: Sharon, जब कोई समस्या आती है, बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क इतना टेढ़ा होता है, देखो लिखो क्वेश्चन
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: मेहनत से चुरा देता है, जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती है। सनी, सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। सनी, याद में लव सीन रहे। तो बाप दादा कहते हैं, और कोई बुशारत नहीं कर, सनी के सागर में समा जाओ। कभी कभी बच्चे सनी के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल के आते। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते बस अब थोड़ी सी है। जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, ऐसे सने में समाया डुबकी लगाई निकल समाते रहो। Yeah.

0: 二四八，三一个小弟妹喽，都是他给你Men not the same, but don't Vese be mukti varish manarayan. Don't men not the same, be mukti.Yes. अपने समान सहज बना देगा, क्यों जिसके साथ सने है उस जैसा बनना ये मुश्किल नहीं होता है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कुछ भी हो, बाप साथ है, मोचने की क्या बात है, कंफ्यूज होने की क्या बात है, बाप का साथ का सहयोग लो। अकेले समझते हो ना तो मौज के बजाय मौज जाते हो, हम मौजना नहीं, ठीक है ना? अभी भी मौजेंगे नहीं मौजेंगे क्या? अभी नहीं मौज रहे है सिद्धि, अभी मौज में हो, इसलिए कुछ भी हो जाए लेकिन मौज नहीं जाए, ठीक है ना? कि मौज चली जाएंगी, मौज नहीं जानी चाहिए। सेवा का बल है तो उस बल को कार्य में लगाओ। सिर्फ सेवा नहीं करो लेकिन सेवा का बल जो बाप से मिलता है उसको काम में लगा। सिर्फ सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं तो थक जाते हो, मौज भी जाते हो, लेकिन बाप के साथ का अनुभव जहाँ बाप है वहाँ मौजी मौज, उस साथ को इमर्ज करो। सुनाया ना, याद करते हो लेकिन साथ को चूस नहीं करते, इसीलिए मौज जाते। संगम युग मौजों का युग है या मौजने का युग है? या मौज कर फिर मौजते क्यों? अभी अपने जीवन के डिक्शनरी से मौजना शब्द निकाल लो। निकाल लिया पक्का कि थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, एकदम मिटा दो। परमात्मा के बच्चे और मौज में नहीं रहे तो और कौन रहेगा? और कोई है क्या? नहीं, तो सदा मौज ही मौज है। सभी अपने ड्यूटी पर खुश हो, कि थोड़ा किटकिट है ड्यूटी में? नहीं, कुछ भी हो ये पेपर पास करना है, बात नहीं है पेपर। पेपर पास करने में खुशी होती है ना, क्लास आगे बढ़ती है ना, तो बात हो गई, समस्या आ गई। ये नहीं सोचो पेपर आया पास हुआ मौज मना। जब बच्चे पेपर पास करके आते हैं कितने मौज में होते हैं, पूछते हैं क्या ये पेपर तो आएंगे? पेपर ही अनुभव में आगे बढ़ाते, इसलिए सदा मौज में रहते। सेवादारी नहीं लेकिन मौज में रहने वाले। सदा ये

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे। मेरा बाबा कहेंगे तो शक्ति हाजिर दिल से। ऐसे ही मेरा बाबा ने दिल से कहा, अधिकार रखा मेरा बाबा, और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। वो कौन सी शक्ति? परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन की शक्ति में विशेष नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर, नेगेटिव संकल्प, चलन को देखते हुए पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव देखना, बोलना, करना सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सहज हो जाए, क्योंकि ये अपोजिशन आएगी, लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आप सहज सफलता दिलाएंगे। तो समझा, इस वर्ष का विशेष वरदान परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य सर्वशक्तिमान उसके आगे मुश्किल किया, लेकिन आप एक गलती करते हो और मुश्किल बना देते हो। जैसे देखो अचानक या से अंधकार को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा। सही विधि है आप रोशनी का स्विच ऑन करो। जो बात हो गई ना उसके क्यों क्या कौन कब कैसे इस क्यों क्यों में चले जाता। छोटी सी

0: तो सहज विधि कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई है। अपन ने मास्टर सर्वशक्तिवानों इस स्मृति के सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे, बिना सीट के अपसेट होते। सीट है तो अपसेट नहीं हो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
1: प्रोग्राम तो बड़े की है, उसकी तो मुबारक है, लेकिन हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। वो कहाँ हुई है? कम से कम 108।

0: जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वालों को ये रिजल्ट बाप दादा को देनी है, चाहे बिना बिना सेंटर पर जाए। किस देश का भी हो वहां जाए, लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए। ठीक है ना? हो तो सकता है ना, थोड़ा टेंशन देंगे निकल आएंगे, 108 तो कुछ भी नहीं, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते। कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आगे आवे। कौन कौन कितने निकालते हैं वो बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखने चाहते। कितने भी निकालो जरूर, क्या है प्रोग्राम हो जाती है लेकिन आगे का संपर्क वो थोड़ा अटेंशन कम हो जाता। निकालना कोई मुश्किल नहीं है कि बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेवा

las han hecho por mí.

0: कोई मांगे नहीं मांगे। लेकिन दादा कभी ये नहीं देखता कि ये मांगे तो थे
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कहीं बच्चे

0: 钱。
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: एक सेकंड में चारों ओर हलचल है, सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है, व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर, इस सृष्टि पर तो चारों ओर हलचल है, तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही व अशरीरी कर सकते हो।

0: इसको कहा जाता है साधना। अच्छा,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई पत दुआ देवे तो क्या करेंगे, लेके पत दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे, लेके अगर पत दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही। पत दुआ तो खराब चीज है ना, आपने ले ली अपने अंदर स्वीकार कर ली तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना। अगर शराब पी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। खराब चीज कोई देवे तो आप ले लेंगे, कोई बहुत सुंदर फल लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है फिर ले लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे ना कि कहेंगे अच्छा तो है चलो दे दिया है। समझ में आता है ये बद दुआ है, लेकिन बद दुआ अंदर धारण नहीं करो नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। अगर मानो कभी बद दुआ का प्रभाव पर भी जावे ना तो ज्यादा देख करके उसको खत्म कर देना। एक बद दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं देके हल्का कर देना, फिर मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को होता है ना, दूसरा तो बद चला गया। लेकिन जिसने बद दुआ संभाली दुखी कौन होता है, लेने वाला या देने वाला? देने वाला भी होता है लेकिन लेने वाला ज्यादा होता है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हाजिरी जरूर लगा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: со шептыке. Антарме. Пефи карпатча банчет. Седена.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मिनट भी मिले

जमाना एक्सरसाइज का है। 5 मिनट में मन की एक्सरसाइज परम धाम से लेके आओ, सुखे वतन में फरिश्ता का याद करो, फिर पूज रूप याद करो, फिर ब्रह्मांड रूप याद करो, फिर देवता रूप याद करो। कितने हुए? 5। 5 मिनट में 5 की एक्सरसाइज करो और सारे दिन में चलते फिरते ये कर सकते। इसके लिए मैदान नहीं चाहिए, दौड़ नहीं लगानी है, ना कुर्सी चाहिए, ना सीट चाहिए, ना मशीन चाहिए। जैसे और एक्सरसाइज शरीर की आवश्यक है वो भले करो, उसकी मना नहीं है, लेकिन ये मन की ड्रिल एक्सरसाइज मन को सदा खुश रखेंगे, उमंग उत्साह में रखेंगे और set।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज के दिन बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा आज अपने दिल में दृढ़ता को लाके ये दृढ़ संकल्प करो कि हमें व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय उसको बचाना अर्थात समापति का समय समीप लाना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Yeah. पॉल्यूशन से भी सिर।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Ishq Deodora. Desisto.

一線をこうバリ割って。

Masters Gyan Sode. So

させばこ。Seven months.

ちは。

Combátelo. Oh, my God, son.

ese pato se mordido de lado.

Ощерта. Сакаш ти неки. Сяде. И сива ме манако. Yeah, there, what's...

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Să tarnete, capic lupine, ce-o să tar, atâți.

सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स

Sunday. Yes.

信的。

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे योग भी दे सकते हो। सकाश दे सकते

Yeah.

इस साइलेंस के सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। सरकमस्टेंस अनुसार ये बहुत ध्यान में रखो। साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी खुलती है और कोई जन्म में जमा करने की बैंक नहीं। अभी अगर जमा नहीं किया फिर बैंक की नहीं होगी तो किस पे जमा करेंगे? इसलिए जमा की शक्ति को जितना इकट्ठा करने जाओ उतना कर सकते। वैसे भी जो करना है वो आप कर लो, जो सोचना है आप सोच लो। अभी जो भी सोचेंगे वो सोच रहेगा और कुछ समय के बाद जब समय की सीमा नजदीक आएगी तो सोच पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा। ये करते थे, ये करना था तो सोच नहीं रहेगा, पश्चाताप में बदल जाए। इसलिए

साइलेंस की शक्ति। एक सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में कुछ।

0: पुरुषार्थ कर रही है। जमा का पुरुषार्थ आप ही कर सकते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

लगा देगा।

0: Pacheco. Hemat Rak. Vijay. प्राप्त कर रहे
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हाथ तो बहुत सहज उठाते हैं बाबा को पता है, हाथ तो ट्रायल के तो बहुत प्रकार के हाथ उठेंगे, लेकिन फिर भी बाप दादा कहते हैं जिस चीकिंग से आप हाथ उठाने के लिए तैयार है, बाप दादा को पता है कितने तैयार है कौन तैयार है, अभी भी और अंतर्मुखी सूक्ष्म चेकिंग करो। अच्छा, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन जितना सुख का खाता जमा होना चाहिए उतना हुआ, नाराज नहीं किया, राशि किया, व्यर्थ नहीं सोचा, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प व्यर्थ की जगह पर श्रेष्ठ संकल्प इतने ही जमा हुआ, सबके प्रति शुभ भावना रखी, लेकिन शुभ भावना का रिस्पॉन्स मिला वो चाहे बदले नहीं बदले, लेकिन आप उससे संतुष्ट रहे, ऐसी सूक्ष्म चेकिंग फिर भी अपने आप को करो, और अगर ऐसी सूक्ष्म चेकिंग में पास हो बहुत अच्छे हो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: Stämme ausatmen. Der Abgang aus Blätter, kein Baby. Kestna, ja, ich ja. Ja, grottige Bauna, nee. Rem, die Bauna. Sech, nemet, Bau. Emalchka, deni. Matlab, karem, nee. मतलब करें भी होते होता अंदर लगा हुआ किसी आत्मा के प्रति और समझते हैं रे पर तो वो हुआ
1: तो क्यों नहीं डायरेक्ट दाता से लो

सिले कहा के स्वागत का रैम ने कई बच्चे ऐसे नाच नकरे

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत बहुत बहुत प्यार, ऐसे नहीं समझे कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है। आप चाहे बोल भी जाओ, लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती। कोई भी बच्चा विशेष न हो ये नहीं है, हर बच्चा विशेष। बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं है, तो सभी अपने को विशेष आत्मा है और विशेष कार्य के लिए निमित्त है। ऐसे समझ के आगे बढ़ते चलो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे आप बाप को याद करने के बिना नहीं रह सकते, वैसे बाप भी बच्चों को याद करने बिना। बाप भी मर्ज कर

बच्चों को देख रही है और बच्चे बाप को देख रहे हैं। सभी सदा खुश रहती है, जो कभी कभी खुश रहती है और कोई सदा खुश रहती, सदा खुश रहती।

Yeah.

बिल्कुल सत्य नहीं, क्योंकि बाप और बच्चों का ऐसा दिल का नाता है जो दिल

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: It's so funny.

0: से स्पीकर बनाने चाहते हैं। आप जो भाषण करो उसके साथ ऐसे अनुभवी आत्माए अनुभव सुनाए तो प्रभाव पड़ता है। तो अभी ये सेवा कर।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: भी आने वाले संपरा खुद बनावे ते लोवे हमें ऐसी रिजल्ट आने वालों की होनी चाहिए। अभी आए अच्छा है, अच्छा है चले जाते।
1: इस संदेश तो बहुत मिल गया सबको, बहुत जा भी रहा है और मिल भी गया।
0: अभी नजदीक आना, कम से कम स्टूडेंट नहीं बने लेकिन आने वाले मिलने वाले सुनने वाले तो बने, कम से कम बोलने तो।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा जब अमृत वेली चक्कर लगाती है विश्व में, तो देख देख सुन सुन
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Hektara.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थ, सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है, मेहनत का काम मुश्किल होता है ना तो टाइम लगता है। तो कौन हो सभी सहज पुरुषार्थ बोलो। याद रखना, अपने देश में जाके मेहनत में नहीं लग जाना।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: I'm

ちゃん。

Peace.

Щеретки та сидять.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: खुशी नहीं
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

सर्व आत्मा में श्रेष्ठ। याद आ रहा है परम धाम, अनादि काल से आपकी झलक फलक यारी जैसे है।

coeficiente.

Sss.

सारे विश्व

capo.

0: सारे क्लब में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रही है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा सेवा में रिजल्ट अच्छी हो रही है, सेवा के लिए मेजॉरिटी को उमंग उत्साह है, प्लान भी बनाते रहते हैं, लेकिन सेवा के साथ संदेश देना ये भी आवश्यक।
2: See?

जैसे सिस्टम में

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: एक गाना भी करो इसकी, अपने बोल की वैल्यू रखो, आपका बोल जैसे कराने वाले वचन किसको

school.

Listen.

Pablo, mira todo a Pansy.

ಆಸ್ಪತ್ರೆ.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Essay.

December

Sete.

Tschüss.

Outside.

सिर्फ डुबकी लगा के बाहर आ जाते। इसलिए जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती उतने ऐसी सब

0: उसमें सने के अनुभव को याद करो, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएंगे। अनुभव करके देखो,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: तो आज से देखो सभी हाथ उठा रहे हैं, सभी उठा रहे हैं, पीछे वाले हाथ हिलाओ। Son.

Yeah.

shit.

Abby. Yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Swap mom.

0: cuman be Athena kaya padal jaya nahi kare ye sao wo sikya se nahi hoga lekin samman to to cuman me sankalap rehta hai ye ho
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा अगर बच्चे को देवर पुरुषार्थी be

del Quito a Elena. Rosa Brandt.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Chicos.

said, son.

बच्चों को जब टेंशन में देखते हैं ना, तो सोचते हैं अभी अभी इस बच्चे का फोटो निकाल के भेजे, समझ जाएगा

आप क्या

Esa.

खुश कर।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हंसी की ये बात है तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, और बाप दादा देख करके बाप को रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते, कभी कभी मेहनत संस्कार ऐसे संस्कार के ऊपर ही कह के अपने को हल्का कर देते, लेकिन बाप ने आज देखा कि ये जो कहते हो आप कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका ये संस्कार है? संस्कार क्या है? और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? जिसको आज आप मेरा कहती हो वो मेरा है या रावण का है? किसका है? आपका है? कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसे कहते हो, तो आज से ये नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं, यह हवा में किचरा आ गया और किया जाता है ना कभी, तो ये रावण की चीज आपके पास आ गई, उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा है, है मेरा है, है नहीं है ना? तो अभी कभी नहीं कहना, जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दादी कहती थी, मेरी ये अभी तक भी दिल है कि हर एक मधुबन वाला शरत में कोई भी कमी अभी रह गई है उसका तो पुरशरत करना है, लेकिन मैं एक बात चाहती हूँ मधुबन वालों से। क्या चाहती हूँ? एक एक मधुबन वासी पाप समान बन जाए। वैसे तो सभी को बनना है, लेकिन मधुबन विशेष है। मधुबन वाले को दादी से प्यार था, ये दादी कहती थी, मुझे पता है। जैसे मम्मा ने लक्ष्य रखा, पापा ने कहा, मम्मा ने किया, ये तो मधुबन वाले जानते ही है। ऐसे ही अमृत वेले से लेके रात से भी प्यार है, दादियों से भी प्यार है, तो जैसे मम्मा ने बाप की हर राय जीवन में लाई, ऐसे हमने भी लाई। तो हमसे अगर दादियों से रात तक ऐसा कोई संकल्प बोल कर्म नहीं लावे जो दादियों को या बाप को या किसी को भी पसंद नहीं हो। ये हमारा संदेश खास मधुबन वालों।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: पाप मदद का जरूर है और अंत तक रहेगी, ये गारंटी है, लेकिन किसके मदद कर जो हिम्मत का पहले पांव आगे कर दे, फिर पाप मदद का दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद कर दे। हिम्मत का पांव उठाओ नहीं और श्रम को बाबा आप कर लो ना बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी कहेगा ठीक है पहले पाँव तो रखो, एक पाँव भी नहीं रखेंगे तो क्या कैसे होगा। इसलिए इस वर्ष पे हर समय ये मजबूत है। पाप को कहने के पहले ये चेक करो, हिम्मत का पांव बनाया और मदद नहीं मिले ये असंभव है। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पांव भरो, इसीलिए गया हुआ है। पहला शब्द क्या आता है, हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप, इसको उल्टा नहीं करो, मदद दे बाप और फिर हिम्मत बचो। मुस्कुराते रहते हैं, वाह मेरे बच्चे लाडले, वाह निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे तो पाप पदम गुना मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा बच्चों को कहते हैं सर्वशक्तियों का वर्षा, इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी समय अनुसार तीवर पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता है। तीवर पुरुषार्थी बनने के लिए
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सदा

Sıra.

0: Beato. Ateneo. Saba apane. Aur main sab ka hoon. Jo zyada apna ban jao.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: दृढ़ता उसको कहा जाता है, मर जाए मिट जाए, लेकिन संकल्प न जाए, झुकना पड़े मरना पड़े जीते जी, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए, इसको कहा जाता है दृढ़ता। कोई कितना भी हिलाए आपकी दृढ़ता को, मजबूत करो, अचल बनो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

कुछ ना कुछ होना ही है।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हाथ उठा के करके दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। हाथ उठाते इसलिए, वैसे तो बाप जानते हैं क्या रिजल्ट।

0: उस समय सभा के बीच में हाथ उठाया था, याद करो, अपने आप को ही फायदा है। अब आप तो खुश हो,
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: फॉलो करना तो सहज है ना, जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे, ये समाप्त हो जाता और अनुभव है सब। सुहावन।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: इस समय आप हर एक का आत्माओं के प्रति रहम, दिल और दातापन कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने के वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने संबंध संपर्क से तो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो, चिल्ला रहे से ऊंचे हो जाओ, हद की बातों में हद के संस्कारों में
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Chao.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है, फिर थकावट से क्या कहते हो, माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है, कुछ भी नहीं है, आपकी कमजोरी बिना बिना माया के रूप बन जाती, बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में खुश निमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति नहीं होती। उसका कारण वरदान सबको एक है कि दूसरा दूसरा एक ही है ना। 60 साल वालों को भी एक, तो 1 मास वाले को भी एक। खजाने सभी को एक सबको एक जैसे, दिनचर्या मर्यादाएं सबको एक जैसे। दूसरी दूसरी तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं कि विदेश की मर्यादाएं और है इंडिया की और है, ऐसे तो नहीं है। थोड़ा थोड़ा फर्क है, नहीं है। तो जब सब एक है फिर किसको सफलता मिलती है, किसको कम मिलती है, क्यों? सफलता को देखा कभी कभी ईर्ष्या भी आ जाती है। वो ईर्ष्या जो दिल से सेवा करनी चाहिए वो दिमाग से करती है लेकिन दिल से नहीं। और फल मिलता है दिल से सेवा करने का, लेकिन कई बार बच्चे दिमाग चूज करते हैं लेकिन दिल और दिमाग दोनों।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी आप सभी भी अपना चित्र खींचो, आता है चित्र खींचने आता है।

सभी ड्रिल करो, माइंड ड्रिल घर में।

Sabi.

रचना इस फिरके के चर में बैठी हुई पूर्वज और पूजा आत्मा हूँ इस

Efe Carpaccia.

Nutella. Ortakat. Esi.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Absorte. Chao, chao.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: और आप सोचो, ब्रह्मन आत्माओं की निजी संस्कार कौन से? क्रोध या सहन शक्ति कौन सा है? सहन शक्ति शांति, ये है ना। तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट के अंदर डाल दिया, जो न चाहे

सदा याद रखो, वो तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, परे माल को अपना बना लिया, पाप के खजाने को होती है कि कितने भोले बच्चे

0: तो अच्छा नहीं है। सब हम चाहते हैं कि बराती बन के नहीं चलना। सजने बन के चल
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

बाप दादा दोनों की सिखाई।

0: Hát vele. On sigila de bachoko. Jo falo karne wale ono ko vishesh. Yaad pyar de de. Va bache va.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: फरिश्ता स्वरूप में रहना है, इसको ही कहा जाता है दीवर पुरुष।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज के स्मृति दिवस पर एक एक बच्चे को स्मृति चाहिए। इस दिन बच्चे इस स्मृति दिवस पर आज अपने में कोई न कोई विशेषता ध्यान में रख और अपने में धारण करे विशेषता। दिन में विशेषता धारण जो भी अपने में कमी समझते हो उस कमी को आज के दिन समाप्त कर कोई न कोई उमंग उत्साह की धारणा का संकल्प करना। सोने के पहले ये संकल्प करके सोना और अमृत वेले उसी को दोहरा कर हमेशा के लिए अटेंशन दे।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

にそっとした国家瓶ね以上な。カインバチゲティエン。

Kidney kills the baby, oh, but I think.

नहीं करती तो खराब चीज है। तो अगर कोई आपको खराब

Sus.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जय स्व के परिवर्तन में जय शिवा के सफल उसका जन्म सिद्ध अधिक रश्मि।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

درم.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बोलने की आवश्यकता नहीं।

Mais à qui pas.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: साधारण अज्ञान ने आत्मा को कितने रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते हो, वो है
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी का यही पुरुषार्थ है ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, योग बाप को सब प्रकार के संकल्प जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का भोज वो दे दिया है ना, भोज दिया है या थोड़ा सा रह गए, क्योंकि थोड़ा भी भोज फरिश्ता बनने नहीं देंगे। और जब पाप आए हैं बच्चों का बोझ लेने के लिए, तो बोझ देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है? जो समझते हैं बोझ दे दिया है वो हाथ उठाओ, दे दिया है देखना, सोच के हाथ उठाना, बोझ दे दिया है, दे दिया है। अच्छा दे दिया, मुबारक हो, दे दिया है तो बहुत मुबारक हो। और जिन्होंने नहीं दिया है किस लिए रखा है? भोज से प्रीत है क्या? भोज अच्छा लगता है? देखो बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं, ओ मेरे बेब फिकर अच्छा बच्चे, तो बोझ का फिक्र होता है ना, बोझ लेने के लिए बाप आए, क्योंकि तेसर जन्म से बाप देख रहे हैं, बोझ उठाते उठाते बच्चे सभी बहुत भारी हो गए, इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं बोझ दे दो, फिर भी क्यों रख लिया? अच्छा लगता है बोझ, सबसे सुखम बोझ है। पुराने संस्कार का बाप दादा ने क्या देखा कि कई बच्चों को इस पुराने संसार के आकर्षण कम हुई है, पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार उसका बोझ मेजॉरिटी में रहा हुआ है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि ये रहा हुआ संस्कार समय पर तो का देता भी है और अंत में भी तो का देने के निमित्त बन जाएगा। इसीलिए आज संस्कार का संस्कार करो, हर एक अपने संस्कार को जानता भी है, छोड़ने चाहता भी है, तंग भी है, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में दीवार पुरुषार्थी नहीं है। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन दीवार पुरुषार्थ ही नहीं है। कारण दीवार पुरुषार्थ क्यों नहीं होता, कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी लेकिन सिर्फ मारा नहीं जलाया भी, ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ा बेहोश भी होता है संस्कार लेकिन जलाया नहीं तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाता है। इसके लिए संस्कार, पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

ये कोई कोई विघन की बातें सुनते हैं ना, तो बाप दादा को एक हंसी का खेल याद आता है। मालूम है कौन सा हंसी का खेल है? वो खेल है बूढ़े बूढ़े गुड़ियों का खेल कर रहे है बूढ़े, लेकिन खेल करते हैं गुड़ियों का, तो हंसी का खेल है ना। तो अभी जो छोटी छोटी बातें सुन ऐसे ही लगता है वान परस्त अवस्था वाले और बातें कितनी छोटी है। तो ये

0: विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दो। दुनिया में तो ऐसा कोई दर्पण है ही नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई दे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समझते देखा बाप ने, समझ बहुत अच्छी। लेकिन समझ के साथ अपने चेकिंग भी अच्छी करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई बातें ऐसी

ऐसे बाप दादा ने देखा है, कई बच्चे लक्ष्य अपना अच्छा

जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ये मिलन विचित्र है, सब रिस्पांस में वाह वाह वाह वाह कह रहे, लेकिन हर एक अपने अपने दिल से अपने आवाज में कह रहे, और बाप दादा इतने सब बच्चों का रेस्पेक्ट

और बच्चा गाते रहते वाह बाबा वाह मेरा बाबा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जब बाप ने अपना बनाया भ्रमर जीवन दी, तो भ्रमर जीवन का आप सबका वायदा क्या है? बोलने वाले बने, अब ये एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो, तो बाप बच्चों से पूछ रही है बचपन का वायदा याद है? सहज करके दिए एक बाप में संसार, एक बाप से सर्व संबंध, एक बाप से सर्व प्राप्तियां, एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी, सब में एक है। चाहे परिवार भी है, ईश्वरी परिवार, लेकिन परिवार भी एक परेशान रहता है। तेरा मन आया कहाँ से? जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन आया कहाँ से? आप सभी तो बेनकोटी बादशाह हो गए, अभी आपका कुछ नहीं रहा, बेनकोटी हो गए लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? बाप का खजाना वो आपका खजाना हो गया तो बादशाह हो गए ना। परमात्म खजाना वो बच्चों का खजाना, बाप दादा वायदे याद दिला रहे तेरे में मेरा नहीं करो। बाप कहते जब बाप ने आप सबको परमात्म खजाने से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली। किस शब्दों में? आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी होई। सर्व याद करो, और आपने कहा हम आपके आप हमारा, ये वायदा है ना? बाप कहते हैं खजानों को सदा स्वप्रत और सर्व आत्माओं के प्रत कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियां कार्य में लगाओ। सर्व बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो, मैं सर्व शक्तिवान हूं, लेकिन सर्व शक्तियों को समय पर मार कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Last number be

सबसे प्यार ऐसे समझते हो या क्वेश्चन उठ

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

ऐसे नहीं, दूसरे प्यारे नहीं है, वो प्यारे है लेकिन मधुबन वालों से एक बात का विशेष प्यार। वो क्या? अवश्य सहज बनाने का एक लिफ्ट है। वो लिफ्ट क्या है? जो भी मधुबन में आते हैं उनकी जैसे खाना बनाने वाले जो भी कोई ड्यूटी करने वाली है, बाप दादा तो कहते हैं, कोई झाड़ू लगाने वाला भी है ना, वो भी भाग्यवान है। क्यों? आते हैं वो ये वायुमंडल

स्पष्ट करने में और शक्तिशाली अनुभव कराने में निमित्त

0: अच्छा बैठ जाओ बैठ।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

sana. Acel alol.

आजकल के सब सिंगर।

மன்சாசக்தி.

poate avără. Cinci cărnă. O schia ușită. Monday.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: एक वाणी, दूसरा स्वर, शक्तिशाली स्थिति और तीसरा श्रेष्ठ
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कहीं जब का थोड़ी बहुत हलचल होती है ना तो घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। गहराई में नहीं जाते, घबरा जाते। जाएंगे

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ
2: जैसे

0: es a ti.
1: Yeah.
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: प्रलोभन ये नहीं कि सेंटर के निमित्त बनने की वाद, स्पीकर अच्छे बनने की ड्रामा अनुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की ये प्रलोभन नहीं है, ये तो लिफ्ट है और आगे बढ़ने की सर्व द्वारा दुआएं लेने की। लेकिन प्रलोभन है जीवन मुक्त की, कोई बंधन नहीं।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी बच्चों

です。

not get

che ci trome. Sada. Da beltace. Tua por me. Che irraggi e

Kiss him.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप लोग ये नहीं सोचना कि हम लोग एक काम क्यों करें, ये तो आपकी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो। जहां भी जाते हो वहां सेंटर खोलने का उमंग रहता है ना। लौकिक कार्य कब तक करेंगे ये नहीं सोचो। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य के निमित्त करते हो तो आप सरेंडर हो, लौकिक पन नहीं हो। अलौकिक पन है लौकिक कार्य में भी समर्पण। लौकिक कार्य छोड़ के समर्पण समारोह मनाना है ये बात नहीं। नहीं तो फिर थी कैसे होगी। इसीलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो तो ऐसी आत्माओं को जो निमित्त लौकिक समझती है और रहती अलौकिकता में है, ऐसी आत्माओं को डबल क्या पदम मुबारक। समझा। इसीलिए ये नहीं कहना दादी हम कुछ रहो नहीं कहूँ। और ये डबल प्रालंबित बना रहे आवश्यकता अगर समझेंगे तो आप बीच रहेंगे। आपको क्या जिम्मेवार दिया है, आप अपने लौकिकता में अलौकिकता लाओ। थको नहीं, थक जाती है। लौकिक काम करके थक के आती है, क्या करें। नहीं खुशी खुशी में दोनों निभाओ, क्योंकि देखा गया है कि डबल विदेशी आत्माओं में कार्य दोनों तरफ करने की शक्ति है। तो अपनी शक्ति को कार्य में लगाओ। कब छोड़ेंगे, क्या होगा, ये पाप और दादी जो निमित्त है दामन के ऊपर छोड़ दो, आप नहीं सोचो। कौन कौन है जो लौकिक कार्य भी करते और सेंटर भी संभालते, वाद रंग लौकिक कार्य भी करते हैं और सेवा के केंद्र भी संभालते। हाँ उठाओ हाथ। अच्छा बहुत अच्छा। नंबर आप लोगों को वैसे ही मिलेंगे, जो सारा धन सेवा करती है उन्हों जितना ही मिलेगा। सिर्फ ट्रस्टियों की करना, मैं बन में नहीं आना, मैं इतना काम करती हूँ, मैं बन में करा बना हार करा रहे। इंस्ट्रूमेंट पावर के आधार पर चल।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: संकल्प।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप की मदद तो है लेकिन समय पर।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा सदा टीचर्स को इसी नजर से देखते हैं कि हर टीचर के फीचर्स में बाप दादा के फीचर्स दिखाई दे, फेस में ब्रह्मा बाप के फीचर्स और बरकुटी में ज्योति बिंदु के फीचर। किसी भी टीचर को देखो तो सबके मुख से यही निकले, ये तो बाप समान है, ये तो ब्रह्मा बाबा जैसे लगते, ये तो शिव बाप जैसे लगते है भी और होनी है। टीचर्स आधार मूर्त है, जैसे बाप के लिए कहते हैं ब्रह्मा बाप का सदा यही स्लोगन रहा, जो कर्म मैं करूंगा वो सब करेंगे। ऐसे हर एक टीचर का यही स्लोगन सदा याद रहता है कि जो कर्म, जो बोल, जो वृत्ति, जो विधि हम करेंगे हमें देख सर्व करेंगे। बाप दादा ने ब्रह्मा बाप के गद्दे आप टीचर्स को दिए बैठने के लिए, मुरली सुनाने के लिए निमित्त टीचर्स बाप की गद्दी मिली हुई। ड्रामा ने आप टीचर्स को बहुत बहुत ऊंचा
2: सबको। बाप दादा तो बहुत बहुत
1: बहिष्ट नजर से देखते। अच्छा अच्छा, बहुत आई है टीचर्स में, फॉरेन की टीचर्स भी है, उठी है। अच्छा, मेहनत, हिम्मत और मेहनत में मुबारक।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

hagan sin que me yo del sin papá que tiene Cushy.

दिमाग अच्छा होने

0: unknown. Us some. Bolnemi. Apne ko bhi khushi hoti. Aur sunne walon ko bhi us samay tak khushi hoti. Achha lagta dekhne sada. काल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों वो सदा नहीं लेकिन कभी रहती कभी
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: संगम योग श्रेष्ठ है वो ठीक है, हीरे तुल्य समझा क्या करना है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जो भी निमित्त बने हुए हैं उन्हों को आजकल के वायुमंडल पर स्वयं तो संतुष्ट रहना ही है, लेकिन संतुष्ट करना भी है। असंतुष्टता का वायुमंडल में प्रभाव नहीं। आजकल संतुष्टता सबको चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं है, इसलिए बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसा परवस होके कर लेते हैं। कुछ सिक्किया, कुछ किमिया, कुछ रैम, कुछ आत्मक सने उसकी आवश्यकता है। वायुमंडल में मेजॉरिटी को बैलेंस रखना नहीं आता, बैलेंस से सिक्किया भी हो और फिर साथ साथ उनको हिम्मत भी दे। सिर्फ सिक्किया से अभी सभी सिक्किया बन गए हैं, इसलिए सिक्किया के साथ हिम्मत और सने दिल का बाहर का नहीं, लेकिन दिल का सने दोनों का बैलेंस रख करके दिन और ऐसे प्लान बनाओ ऐसा प्लान चलता रहे जैसे समय पर समय पट्टियां चलाते हैं ना, वो तो चलाते ही हूँ, लेकिन छोटा मोटा प्रोग्राम ऐसे विधि निकालो जिससे चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बन। चाहे ना है लेकिन हिम्मत कम है, उसमें मिलके कोई ना कोई अरमाज के लिए ऐसा वर्क निकालो जो सभी बिजी हो जाए उसमें, रिजल्ट आती रहे। और चीकिंग भी हो, अगर नहीं करते हैं तो क्यों? अलबेलापन है तो उनके ऊपर सने से सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि समय तीव्रता से समय पारा तो ऐसा कोई प्लान बनो, कोई ना कोई वर्क निकाल के सबको बिजी रखो उसमें। ठीक है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: डॉक्टर्स का फर्क भी बाप दादा को सेवादारी ग्रुप देखने में आता है, सिर्फ थोड़ा समय इस सेवा को भी देते रहो। कई डॉक्टर्स के बारे नहीं खाएंगे, और कोई गुरु कहेगा तो भी नहीं।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

ese... ¿Viste?

सभी का अटेंशन मेजर

0: America to practice बहुत बहुत आवश्यक लगे. इसलिए अपने समय पर बाहर
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो.
2: सत्यम शिवम सुंदरम. सत्यम शिवम सुंदरम.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Chacho। जो समझते हैं दृढ़ संकल्प कर रहे हैं। अच्छा आप घड़ी घड़ी निकाल लेंगे ना तो निकल जाएंगे, रख नहीं दो अंदर क्या करें कैसे करें, निकलता नहीं है ये, नहीं निकालना ही है। तो दृढ़ संकल्प करेंगे, अभी हाथ उठाओ जो करेगा, मन से हाथ उठाना, पैर से नहीं उठाना, मन से आप नहीं उठा रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चों का बाप दादा माना के संकल्प रीड करते हैं, कई बच्चे समय अनुसार सरकमटेंस अनुसार
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ऐसे वो माइक वाला जिसके आवाज पे ताकत हो, माइक उसको कहा जाता है। चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन आवाज

0: से मेरी तीसरे बेहतर कोके माइक बन के आवाज करे, ऐसे माइक चाहिए, ऐसा माइक नहीं जो अपने समाज में ही करे, नहीं माइक तो बड़े आवाज वाला चाहिए। अच्छा,
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा है शो तो करो और बढ़ता जाए तो भारत की समस्या खत्म हो जाए। ऐसे जैसे पंप फाट डालती है ना, आवाज हो जाता है, ऐसे कोई आत्मक पंप लगाओ, एटम पंप नहीं, आत्म पंप। अच्छा बैठ जाओ, मुबारक को बोल,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दूसरा है दिल पर दिल।

और स्वाकी सुन।

sobresalta. इसलिए जमा का खाता कम हो जाता, जमा के खाते की चाबी है बहुत सहज, डायमंड चाबी है। गोल्डन चाबी लगाते हो, लेकिन डायमंड चाबी चमकी है, निमित भाव और निर्माण भाव। अगर सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव निर्माण भाव और हर
dice: si va a carnaval, llama a cacata que se portalla de.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज बाप दादा सभी बच्चों

아주

Sabika. Yo te penduro. A que abre samne. Sous-titrage.

Jesus Juan, ich soll sein Spiel.

0: एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखती है। ऐसे ये एक्सरसाइज मन को शक्तिशाली
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: लक्षण

Srah.

इससे है। तो और बातों में नष्ट हुआ होना कोई मुश्किल।

John Boutique.

वचन करम संबंध

संपर्क में इसी, स्वभाव में इसी, सेवा में इसी, संतुष्ट करने में इसी, संतुष्ट रहने में इसी।

Исцели, баба.

0: a man.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी बाप दादा ने चोटरल बताई थी, याद है? 5-5 मिनट सारे दिन में एक बार ड्रिल करनी है, वो की है जिसने वो ड्रिल की है, वो हाथ उठाओ। की है, की है, दोनों ने हाथ उठाए। क्यों? थोड़ा टाइम और टाइम नहीं किया, तो अभी क्या करेंगे? कम से कम बताएं, कम से कम बताएं, आज कम से कम 8 बारी सारे दिन में कर सकते हो, कर सकते हो तो इस वर्ष का होमवर्क, इस सीजन का होमवर्क दूसरी सीजन तक कम से कम 8 बारी ये ड्रिल जरूर करनी है, जरूर। देखेंगे नहीं, चाहे मिस हो जाए तो 1 घंटे में अनेक बार करके पूरा करना, नींद पीछे करना, सोना पीछे। पहले ड्रिल 8 बारी पूरा करके पीछे सोना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।